जित मिले चुके सब सूग संतापी। वाहिगुरु जीओ आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस।

दयाल, तू सदा ही दयाल है महाराज। तुहाडा सब कुछ खुस गया तां वी उह दयाल है, ते साडी ते निगी जी सूई वी गवा जावे ते सानू रात नू नींद नहीं आउंदी। क्यों नहीं आउंदी? क्योंकि हर नां ना जिन्ना पास, जिन्ना कोल रब दा नां नहीं है। तुसी जिन्ना कोल रब दा नां है थोड़ी विच वी सिदक वाले ने, जिन्ना कोल रब दा नां नहीं उन्हां कोल बहुत होवे ते तां वी बेसिदके हो के अपने जीवन नू बतीत करदे ने, तां वी विगा। नानक भगतां सदा विगास, केतिया दूख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार। वो इत्थे जींदे ने, उन्हां दा तल ए है, ते दुनिया दा तल वह वखरा है। सतगुर ने बख्शिश कीती है, साढ़ तपंदा तिस लगै हर ना ना जिन्ना पास। महाराज ने कहा जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस, क्योंकि उन्हें जगत नू जीवन देण वाले पुरख नू त्यागया होया, ते उहदी आस मनुखां उत्ते है, पदार्थां उत्ते है। अगला बोल है जी, दुइये भाए विगुचिए। दुइये दा अर्थ हुंदा है एक अकाल पुरख दे नाम नू छड्ड के किसी होर विच रज्जण। दुइये भाए विगुचिए, सतगुर ने आख्या विगुचिए दा मतलब हुंदा जी खुआर होना। एक वो है जिहड़ा सब कुछ उजाड़ के भी तुरिया फिरदा, ते एक वो है जिहड़ा सब कुछ पा के भी उजड़िया फिरदा। ज्यादा मंदी हालत किहदी होवेगी? तुसीं कंपैरिजन करके वेखो। एक वो है जिन्हें सब कुछ लटा दिता फिर भी वह तुरिया फिरदा, गीत गाउंदा फिरदा माछी वाड़े दे जंगलां च। एक वो है जिहड़ा उजाड़न वालियां विच सी, जिन्हें बहुत कुछ पा लिया, जिन्हें आनंदपुर नूं भी लुट लिया, ते फिर भी खुआर होया फिरदा, फिर भी भड़कदा फिरदा। दुइये भाए विगुचिए, गल पईस जम की फास। महाराज ने कहा जेहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखिया। अच्छा, इस पॉइंट नूं समझो थोड़ा जिहा। सतगुर ने आख्या जे ही सुरत तेहे राह जाए, बंदे दी जिद्दां दी सुरत हुंदी है उह उदां दे राह चलदा। जिहो जिहा जीवन विच बीजदा है बंदा उदां दा वढ़दा है। जे तुसीं जीवन दे विच शुभ गुण बीजे ने ते तुहानूं उहदा रिजल्ट अवश्य मिलेगा। जो बीजिया है, बीजै बिख मंगै अमृत, इहदा फायदा हुंदा। जे तुसीं जीवन दे विच कंडे बीजे ने ते कंडे वढ़ने पैणे ने, ते जे जीवन विच अमृत बीजिया है फिर दुनिया की कोई ताकत। अच्छा, धरती दे विच ना तुसीं कोई बीज सुट दिओ ते लोकां नूं झूठ बोली जाओ, पर एक दिन ऐसा होना जिदन धरती ने तुहाडा झूठ दुनिया के सामने उजागर कर देना, क्योंकि धरती ने कदी झूठ नहीं बोलना। सो चढ़दी कला बुलंदी भी उन्हां नूं मिलदी है जिन्हां ने जीवन च बीजी होवे, जिन्हां ने बीजी नहीं उन्हां नूं मिलना भी की है। जिहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखियास। सतगुर ने आख्या रैण विहाणी, एक उह ने जिन्हां ने जिंदगी रूपी रात विहा दित्ती, एवें ही वाशनावां विच ही विहा दित्ती। रैण रात शब्द वरत्या। अच्छा, और ख्याल करो जिहड़ी रात हुंदी ना सब तो छेती रात लंघदी है, दिन अजे बंदा बिजी हुंदा है। रात नूं तुसीं मंजे ते थके हारे पै, तुहानूं पता ही ना लगा भी किहड़े वेले सवेर दे 5 वज गए, रात ऐदां निकल जांदी है। हाँ, इकना दी रात माड़ी निकलदी है, पता किन्ना दी? जिहड़ा बीमार बंदा होवे उहदे लई रातां लंबियां हुंदियां। बीमार जिहड़ा हुंदा ना उहदे लई रात लंबी हुंदी है, सारा सारे सुत्ते हुंदे आ, उहनूं इदां लगदा किहड़े वेले 5 वजणे अजे। पर जिहड़ा बंदा हैल्थी है, काम करके आया, थकिया टुटिया है, वह आण के लम्मे पिया, तो उहदी रात उसे वेले निकल गई। अच्छा, जिंदगी दी रात है जी, कईआं दी रात बड़े आराम नाल निकलदी है। वह कोई रात नूं सुरत उत्ते बोझ लै के मंजे उत्ते लम्मे नहीं पैंदे, मन उहनां दे हल्के हुंदे ने, आराम नाल निकल गई। ते एक वो ने जिहनूं बाबे ने कहा दुखां छेती दे गया सूलां छेती रात, भी दिन भी दुखां नाल निकलिया ते रात भी इदां निकली जिवें बंदा सूलां ते पिया होवे। बीमार बंदे की रात लंबी हुंदी है, औखी निकलती है। सतगुर ने कहा जिंदगी की रात निकल ते सारिआं दी जाणी है, पर कईआं दी पछतावे च निकलदी है, पछतावे च दुखां च निकलदी है। दुखां छेती दे गया सूलां छेती रात। रैण

0: सजा, ऐसी झूठिया नु देवांगा सजा, ऐसी झूठिया नु देवांगा सजा।
1: पीर ते बाणिए दी आपस विच अणबण हो जांदी है। हुण गुरु प्यारे बथेरे तरले करदा है बाणियां भी, वी पीर जी दसो पैसे किन्ने चाहीदे आपां गल नबेड़िए, पर इह कहिंदा सज्जना अपने वादे दे उत्ते पूरा रह, बस तूं जिहड़ा वादा कीता सी उह साडे नाल वादा कर। जदों आपस विच गल ना बणी ते बाणियां इह शाहूकार इस पीर दी परवाह कीते बगैर इन्हें अपने बच्चियां नूं चक्या ते अपने घर वल नूं तुर गया, और इस गल दी जिहड़ी गुस्सा सी ना पीर दे दिल विच अग वांग भांबर बल उठे ने। कहिंदा एडा हंकारी, मेरे को चीजां लईयां, मेरे को वस्तुआं लईयां ते हुण देण वार मुकरेगा, ते एडा हंकारी भी हुण चक के चला गया न्याणे। सत्संग जी उस वेले फिर यह गुस्से आके कहिंदा कहिंदा मैं चालिया कटांगा, शिला कटांगा और इस सारे शहर नूं गर्क कर देवांगा, सारे शहर नूं, इस सियालकोट नूं गर्क कर देवांगा। कहिंदा झूठियां दा शहर है। गुरु प्यारिओ अग्यों इस गल दा पता पिंड दे इस शहर दे लोकां नूं लगा भई पीर जी गुस्से हो गए, गल बाणिए दे नाल सी ते सारे शहर का की कसूर है। ये आ होए ने पंचायत कट्ठी होके बाणिए दे कोल, इहदे को पीर जी को आउंदी है कि सरकार ठीक है उस शाहूकार ने चंगा नहीं किया, जिहड़ा उहने वादा किया सी उहदे तो मुकर गया, पर यह खुदा दे बंदे तुसी सारे शहर का की कसूर है, सारे शहर नूं कादे वास्ते नुकसान कर रहे हो। यह कहिंदा नहीं, गुस्से विच आया कहिंदा नहीं, इस शहर का इत्थे दुनिया दे उत्ते वसण दा कोई हक नहीं है, सारे शहर का नामो निशान मिटा देवांगा, मैं चालिया कटांगा। ते गुरु प्यारे वो बथेरे तरले करदे ने, जदों दो चार वार कट्ठे होके बंदे आउंदे ने, पर यह पीर ना मन्निया। आखिर अपने चेलिया नूं कहिंदा कहिंदा एक दो दिनां दे विच बंदोबस्त कीता जावे, मैं चालिया कटांगा। गुरु प्यारे इह उही है जो कुछ अपनी सिख कौम हुण चुपहरे कट के करदी है ना, चुपहरे इदां ही असलाम वाले चालिए कट के एक करामातां वाले लोग इदां दी, इहनूं एक बंदगी का नां सिमरन का नां दिता जांदा है। सो मैं बेनती कीती सी भी साडी सिख कौम जिहड़ी है ना, दुनिया दे होर ते लोक भरम करन भी आ शास्त्र पढ़िया आ फायदा हुंदा, आ वेदां दा पाठ करांगे आ फायदा हुंदा, पर गुरु के सिख नूं इदां दे पखंड नहीं सी करने चाहीदे, उहनूं नहीं पखंड करने चाहीदे भी आ बाणी पढ़िया आ फायदा हुंदा, सुखमनी पढ़िया आ फायदा हुंदा, जप जी साहिब पढ़ांगे उहदे नाल आ फायदा होगा। गुरु प्यारिओ गुरबाणी गुरबाणी है, गुरबाणी जो पढ़ांगे उहदा महत्व बंदे नूं मिलना ही मिलना। दाता जी भले करन साडी सिख कौम इन्हां पखंडां चों निकले, गुरु महाराज जी ने गुरु प्यारिओ किदां दे सिख असी गुरबाणी च वी वंडियां पातियां, आ गुरबाणी पढ़ांगे इहदे नाल सानूं आ पुन मिलेगा। तो गुरु प्यारिओ इह हंकारी फिर पीर पीर हमजा गौस इह हंकार दे विच आ के बड़ा कुछ कहिंदा, जिन्ने शहर वाले कई बार आए कट्ठे होके पीर जी साडा की कसूर है, उस सेठ नाल निबड़ो जिद्दां तुसीं निबड़नी आ, पर साडा की कसूर है, पर ना मन्निया। आखिर सतसंग जी इह आखिर वो लोग बेचारे बेबस होए चले गए, तो यह अपने चेलिया नूं कहिंदा है कहिंदा तैयारी करो, एक दो दिन दे विच तैयारी करो, मैं चालिया कटांगा, शहर नूं गर्क कर देवांगा। सो गुरु प्यारिओ यह हंकार दे विच आया अपने चेलिया दे नाल कुछ गल्लां बातां करदा है, कहिंदा बंदोबस्त करो आपां इस शहर नूं गर्क करना, सारे इंतजाम कर लिया जावे, किसे नूं डेरे दे लागे ना आउण दित्ता जावे, मैं मुकम्मल तैयारी करके शिला कट्टण वास्ते चालिया कट्टण वास्ते उस गुरु प्यारे इन्हें एक अपना मठ बनाया होया सी, और ये सिमरन बंदगी उस मठ दे विच करिया करदा सी और बहुत सारे चेले भी इन्हें रखे हुए सन और आप फिर उस मठ दे विच एक दिन बैठ जाता है ते अपने चेलिया नू हदायत कर दिंदा है कहिंदा मठ दे नेड़े किसे नू ना आउण दिता जावे भावे किड्डे तो किड्डा बंदा होवे किडिया कोई सिफारशा करे किनिया भी कोई मिन्नत करे पर किसे नू लागे ना आउण दिता जावे ते गुरु प्यारिओ ए फिर पीर उस मठ दे विच बैठ के चाड़िया कट्टण वास्ते और शहर नू गर्क करन वास्ते जिहड़ियां व्योंत बंदियां करदा गुरु प्यारिओ खुदा नू जपदा है हुण खुदा दे बनाए हुए बंदियां नू और ये पीर इस वो खुदा दे शहर नू साध संगत जी ये गर्क करन ते पीर जिहड़ा वो उत्तर आउंदा ते वे किवें करदा सुनो त्यार।

दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिख तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साकै तीने ताप, निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे, नानक मांगै दान प्यारे। सुही महला पंजवां, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावै गुण सदा रसाला। रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करें बसें तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभु देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सुजाना।

रहाओ। जाते ना ही को सुखी ताके पाछे जाऊं, छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाऊं। करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाऊं, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं। राग सूही महला पंजवां, घर पंजवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एकै अवर नहीं को लेखै, संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया। रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कुठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया। विच मन कुटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया। कीर्तन जुरिया बहु बिद फिरिया, पर को हिरिया बिखना घिरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बौर न फिरिया। सूही महला पंजवां, रास मंडल कीनो अखारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ बोबिद रूप रंग अपारा, पेख है खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, बरन चिहन नाही मुख नाम सारा।

ढंग न मीठे बहना रहाओ सहज शिंगार कामण करे आवे तां सुहागण जां कंतै भावै ना तिस रूप न रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम पुलाणी हो मैं जाई तकंत समाई तो कामण प्यारे नव निद पाई अनक जन्म बिशरत दुख पाया कर गै लियो प्रीतम प्रभ राया पणत नानक शह पी होसी जै भावै प्यारा तैरा वेसी सूही महला पहला घर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंबका थोड़निया दिन चार जियो विण नावै प्रम पुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे सेती रत्या जन्म न दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवै बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिरै बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे शब्द रते मन माहे जियो चिट्टे जिन के कपड़े मैड़े चित कठोर जियो तिन मुख नाम न उपजै दूजै व्यापे चोर जियो मोल न बूझै अपना से पशुआ से ठोर जियो नित नित खुशियां मन करें नित नित मंगै सुख जियो

ना ही दुख संतापना, मन मुख परम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी हुए विडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा करियाणिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया, एक नानकी अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सोही महला पहला। ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाइयै, त्यों साकत जोनी पाए भवै भवाइयै, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हौमै आवै जाए परम भुलावना, रहाओ तू गुरमुख रखनहार हर नाम त्याइयै, मिलै तुझै रजाए शब्द कमाइयै, तू कर कर वेखै आप दे सो पाइयै, तू देखै थाप थाप दर भी नाइयै, देही होव खाक पवन उड़ाइयै, ये किथै करियो ताक महल न पाइयै, देह दीवी अंध घोर कब मुहाइयै, गर्भ मुसै कर चोर किस रू आइयै, गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइयै, शब्द निवारी आग जोत दिपाइयै, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाइयै, सदा रहे निहकाम जे गुरमत पाइयै, रात दे हर नाम मन वसाइयै, नानक मेल मिलाए जोत दुपाइयै, सूही महला पहला। मनो न नाम विसार एनिस त्याइयै, ज्यों राखै कृपा तार तिवें सुख पाइयै, मैं अंधले हर नाम लकटी टोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहाओ जां देखो तां नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद भावै तिवें रजाए परम पौ भंजना, जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै,

चार सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा उरतार मिलया होए ना विछड़ै गुर कै हित प्यार पिरसा लाही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती नार मनमुख मन न पिजई अत मैले चित कठोर सपै दुध पियाई है अंदर वेसन कोर आप

समाए चिरीव शून्य पी मिलन जो सतगुर सेवाना अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवान नावे जन्मे ना मरे नावे दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यो केल करन सज्जन मिले ना विछड़े जे अन दिन मिले रहन इस जग मैं विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सुख मगम है कित बिद मिलिया जाए गुर कै शब्द ब्रह्म कटिए अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिन कै बलिहार नै मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याय नंग स्यो गुरमुख नाम लगन तुर पूर्ब हो वै लिखिया गुर भाणा मन लेन वडभागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वेखा लिया प्रभ आत्म राम पछाण सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोए गुर प्रसादी मन वसै तीत घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभाव सी जो प्रपाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सुही अष्टपदिया महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पै आप वेचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करे ता सतगुर मेलै हर हर नाम त्याई रहाओ जे सुख दे ता तुझे आराधी दुख पी तुझे त्याई जे भुख दे ताए तही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विजय।

Barea. तेते अवगण हमारे दया करो किश मेहर पावो। डुबदे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपै

जाते ऊपर को नाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागे हो सतगुरु दे दरबार दियां हाजरियां भरदियां रब्बी बाणी दे नाल आप जी ने साध बनाई है, सतगुरु दे चरणा विच अरदास होई है। आओ समा है पावन हुक्मनामे दी विचार दा, तिस नाल जुड़न दा यतन करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोएथ अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत। सहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच जुड़ बैठे अति सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों, गुरदेव दी बड़ी बख्शिश हुई है, आप सब सतगुरां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के मालक जी दी अमृतमई बाणी दे कीर्तन गुरु करके रागी सिंघां पासों श्रवण कर रहे सी। उपरंत गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास होई ते अज दा जो पावन मुखवाक है वो आप संगत ने श्रवण कीता है। तो आओ सात संगत, पावन मुखवाक दी विचार नूं आरंभण तो पहला, जिन्हें शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राहीं श्रवण कर रहे हो, फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द राग बिलावल विच शहीदां दे सिरताज, धन धन धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज दी रचना तों उचारण कीता होया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 823 अते 24 दे उत्ते सुभायमान है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज ने इस पावन शब्द दी रहाओ वाली पंक्ति विच गुरु दी वड्याई बयान कीती है। वैसे गुरु दा अपना अर्थ इहो ही हुंदा है जिहड़ा बंदे नूं डार्कनस विच्चों कढ के विजडम वाले बन्ने, लाइट वाले बन्ने, चानण वाले बन्ने लै जावे, उहनूं गुरु कहिंदे ने। गुरु जिहड़ा है इहदा काम ही इह है वी इहने सानूं अनेरे विच्चों कढणा है। गुरु सानूं राह दसदा है, राह दसे रहे, जिवें दुनियावी तौर उत्ते साडे टीचर हुंदे ने, वो सानू सिख्या दिंदे ने, सबक दसदे ने। इदां ही रूहानी तल उत्ते भी गुरु की लोड़ है। तो वह गुरु कौन है? वह है शब्द गुरु। सतगुरु महाराज की बाणी दे विच जदों भी गुरु का जिक्र आया है तो महाराज ने शरीर नूं गुरु नहीं कहा बल्कि बाणी नूं ही गुरु कहा है, विचार नूं गुरु कहा है। आपां पढ़दे हां बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार है। बाणी वो है जिहड़ी महाराज ने अपने मुखारबिन तो उचारण की, जिहड़े शब्द ने वो अज भी साडे कोल ने, वो थ्योरी अज भी साडे कोल है। ते जिहड़ी देहधारी गुरु की परंपरा सी उहनूं महाराज गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह ने संपूर्ण कर दिता, खत्म कर दिता। आपां इदां समझ सकते हां भी जिवें किसे वड्डे

कोट पराद हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो, हमें अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम्हें अपन बिरद रखा,

0: जय मात पिता सपनीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई
1: जय महाव्यान दूर जम दल केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल हो भयत पारी हर को नाम खिन माही उदारी
1: चरण करत नहीं तले हर को नाम कोट पाप पर है
0: मुख नाम जपो मन मेरे नानक पाप हो सुकनेरे।

0: जान की अबर न जान सको
1: सर्व कर्म श्रेष्ठ धर्म हर को जान जब निर्मल कर्म
0: सकल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दौर मत मल हिरिया
1: सकल उद्यम उत्तम पला हर का नाम जब हो जी सदा
0: सकल वाणी में अमृत वाणी हर को जासू रसन बखानी।

0: रात रहे होते है अंधार,
1: से जो लावे नेह ताको हाथ नावे के
0: मनार के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नान के आप लहलाई।
1: मिथ्या तन तन कुटुंब सुभाया, मिथ्या होमे ममता माया।
0: मिथ्या राजवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
1: मिथ्या राता मिथ्या राम संग माया पेख हस्ता।
0: मिथ्या त्रो मोह मान, मिथ्या आपस ऊपर कत गुमान।
1: अस्कर पग साध की सरन, नानक जप जप जीवे हर के चरण।
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने, मिथ्या पर दर को हिर।
1: मिथ्या नेत्र पेतर पात्र अनुराग, मिथ्या रसना भोजनान स्वाद।
0: मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है।
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बात लेत बेकारा।
0: जैन बूझे मिथ्या सा पे, सफल दे नानक हर हर नाम ले।
1: धरती सागर की आजा, साच बिना कह होवत सूचा।
0: व्यथा नाम बिना तन अंध, मुखावता के दुर्गंध।
1: सिमरन दिन रहन बेता बिहाए, मेघ बिना जो केती जाए।
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ धाम।
1: तन तन दे जन जय कट बलियो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ।
0: रहते अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गढ़ लावत।

0: साध के संग में खुजल होत, साध संग मल सगली खोत,
1: साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग परगे सो ज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत नवेरा,
1: साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभु महेश मानी,
1: साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले,
0: के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा,
1: साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कतहु तावे, साध संग स्थित मन पावे,
1: साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रसो प्रसन्न,
0: साध संग दसवन समीत, साधु के संग महापनीत,
1: साध संग के सियो नहीं बैर, साध के संग न बिंगा पैर,
0: साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा,
1: साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तुझे सब आप,
0: साध के संग गोचर मिले,
1: आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई,
0: साध के संग न कमूतावे, साध के संग स्थित मन पावे,
1: साध संग बस गोचर ले, साधु के संग जस सहे,
0: साध के संग बसे थानूचे, साधु के संग महल पहुंचे,
1: साध के संग रडे सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के करवान,
1: साध के संग सब को लोदारे, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे,
0: साधु के संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे,
1: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन,
1: साध के संग सर्व धन गम, नानक साध के संग सफल जनम,
0: साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल,
1: साध के संग कलुख हरे, साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिसरत हर मेला,
1: जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बेता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे,
1: साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर,
1: साध संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कट कट डीठा,
0: साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी,
1: साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संयोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ख्यान है,
1: साध की उमर है गुण दूर, साध की उमर है भरपूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा

0: लेप जैसे जल में कमल लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा ने डोक जैसे सुर सर्व को सोख।
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान।
1: ब्रह्म ज्ञानी के दीर जेक जम सुधा को खोजे को चंदन लेप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाऊ नानक जो पाव का सहज सुपाओ।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला।
0: ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तरी।

0: ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परिपकार महा
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी के हो सुपला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सलोदार नान ब्रह्म ज्ञानी जपे संग संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी यह बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म

0: ज्ञानी कै सकल मन माहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथे आनंद आया जाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की मिल कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठा करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पर्ख विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब पर हाथ।
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी,
1: तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा रजान,
0: जो वरताए साई जुगत, नानक हो पुर कहिए जीवन मुक्त,
1: ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित का राखे तैसा तन्नाओ,
0: आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई फन होग,
1: लखन जाए पा ब्रह्म के रंग,
0: जैसी मत दे तैसा

0: पुजारी कई कोट आचार ब्योहारी
1: कई कोट पे तीर्थ वासी कई कोट बन परमे उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कब का विचार
0: कई कोट नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट पे अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपिगातम निकोर
1: कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख न कर है
0: कई कोट माया श्रम माहे कई कोट पर देश पर माहे
1: जित जित लावो ते तक लगना नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर पे पाए कई कोट पातर बिरख निप जाए
0: कई कोट पवन पानी बैस संतर कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट सदी असुर नखतर कई कोट देव दानव इंद्र से छतर
0: सगल समग्री अपने सो तार नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजा ताम साधक कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समोद कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चर जीव कई कोट गिरी में स्वर्ण जीव
0: कई कोट जक नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मेरे गाच
1: साते मेरे सबूते दूर नानक आपल मतरिया भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट भोजनी फिरे
0: कई कोट बैठते ही खाहे कई कोट काल है थक पाए।

0: आत्म है पार ब्रह्म लहंते।
1: दर्शन प्यास तिनको मिलियो ब्रह्म विनाश।
0: कई कोड़ मांग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग।
1: इनको या सुप्रसन्न नानक की जन सदा तन तन।
0: कई कोड़ खानी अर खंड कई कोड़ आकाश ब्रह्मांड।
1: कई कोड़ अवतार कई ज्योत के नौ विस्तार।
0: कई बार पसरे पासार सदा।

0: अनंत राज विमान सो नरक पाती हो स्वान
1: जाने मैं जो बनवंत सो बेटा का जंत
0: आपस को करवंत कहावे जन्म रह वो जून परमावे
1: का जो करे गुमान सो मूर्ख ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक की हमक ते आगे सुख पावे वह लश्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश
1: जाए बलवंत किन में होए जाए बसमंत
0: किसे न बदे अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी
1: अभिमान सूजन परवान
0: कूड़ कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे
1: तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग
0: अनक जतन करा तुम नहीं द्रव है हर दरगेह को।

0: जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए।
1: कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद आनंद छूटे।
0: सास खटे लह कोठ तावे तृप्त नावे माया पाछे पावे।
1: अनेक भोग भिक्षा के करे न तृप्तावे कब कमरे।
0: बिना संतोष नहीं को राज्य स्वप्न मनोरथ बैठे सब काज।
1: राम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए।
0: कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप।
1: कर्ण करावन करने हार इसके हाथ का विचार।
0: जैसी दृष्टि करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए।
1: जो कुछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर से भूके संग।
0: बुझे देखे करे विवेक आप है एक आप है।

0: मन में है आप मन अपने माहे, नाने कीमत कह न जाए।
1: सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वके अन्नी,
0: सच सच सच सब कीना, कोड मदा किने बिरल चीना।
1: पला पला पला तेरे रूप सुंदर अपार रूप,
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घड़ घड़ सुनी श्रवण।

0: संत के दुखन आर्जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सब समझाए, संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन,
2: संत के तिगुर के न कोए, संत के दुखन मात्र होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतर,
2: संत के दुखन दे मुख पवे, संतन के दुखन का जो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिग जोन किर माए,
2: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले,
0: संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच

0: संत का निंदक राज ते हीना, संत का निंदक दुख यार देना,
1: संत के निंदक सर्व रोग, संत के निंदक सदा वियोग,
0: संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का निमित,
0: संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जन में मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत का दुखी अद बी ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी तो ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थूथा, जो सास बिना मृत की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किस नाए, अपन बीजा पे खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रख न हार, नानक संत पावे ता लए उबार,
1: संत का दुखी अमे लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईदन नहीं तरापे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माए दहेला,
0: संत का दुखी तरम ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: निंदका तरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
1: संत का दुखी न मरे न जवाइए,
0: संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कीर्तन मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए,
1: सदा सदा दिसको नमस्कार,
0: प्रभु की उसद करो दिन रात, तिसे त्याव हो सास गिरास,
1: कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेलाव करने हार, दूसर कौन कहे।

0: आप के पाए तनानक जाप।
1: प्रभ जतस सोभावंत सगल संसार उदरे तन मंत।
0: प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख बिसारन।
1: आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द पै निहाल।
0: उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ पा।

0: तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड,
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान,
0: नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगल आकार,
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण,
0: हर कृपा से अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए,
1: रूप सत जा का सत्य स्थान, सत केवल प्रधान,
0: तू सत जाकी बाणी, सत पुरख सा महेश माणी,
1: सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त,
0: सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिसे सा भली,
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई,
0: सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाके दे प्रवेश,
1: सत निर्द पूजा जे कोई, नाम जपता की गत होए,
0: आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत,
1: जिसकी से सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार,
0: सत्य कीमत न जाने किया, नान ज्योत सुभावे सो वर्तिया,
1: विस्मन विस्म भय विस्माद, जिन बूझिया तिसे आया स्वाद,
0: सब के रंग राजन रे, गुर के बचन पदार्थ लहे,
1: ओए दाते दो काटन हार, जाके संग तरे संसार,
0: का सेवक सो वड भागी, जान के सांग एक लिव

0: सास परसनहार
1: पूजा सत
0: सेवदार
1: दर्शन सत सतनहार नाम सत सत्यावनहार
0: आप सत सब धारी आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभता सुरत सत सत जा सुनता
0: जनार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मान्या करन करावन तन मोल पहचान्या
0: के दे विश्वास पर बे आया तत ज्ञान तस मन प्रगटा।

0: आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी।
1: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत।
0: ठाकर को सेवक जाने सांग, प्रभु का सेवक नाम के रंग।
1: सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की रखे निरंकारा।
0: सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सास सास मारे।
1: अपने जन का पर्दा ढक, अपने सेवक की सर पर रख।
0: अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई।
1: अपने सेवक की आप पत रख, ताकि गत मिट कोई न लख।
0: प्रभु के सेवक को कौन न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दिस प्रगटाया।
0: की गिरी मैं कल रखे, पसम करे लश्कर कोट लखे।
1: जिसका सास न काटते आप, ताको रख देकर हाथ।
0: जतन करत बात, तिसके करता बिरथे जात।
1: मारे रखे अवर न कोए, सर्व जिया का रखा सोए।
0: माहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणे।
1: बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एहो मन तन त्रपिए।
0: अमृत जन गुरमुख पाया, तिसको अवर नाही दिसताया।
1: नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग।
0: नाम रस जो जानते बताने, मन तन नामे नाम समाने।
1: उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम।
0: बोलो जस जी बा दिन रात, प्रभ अपने जन की निदात।
1: करे भक्त आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सोर समाये।
0: जो होया हो सो जाने, प्रभ अपने का हुकम पहचाने।
1: इसकी महिमा कौन बखानो, इसका गुण कह एक न जानो।
0: आठ पैर प्रभ से हजूरे, कौ नानक से ही जन पूरे।
1: मन मेरे तिन की ओट ले, मन बने अपना तिन जन दे।
0: तिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता।
1: इसकी सबन सर्व सुख पाव है, इसके दर्शन पाव मिटाव है।
0: अवर स्यान पर सगली

0: संत कहत रहत गत पावो।
1: साधु सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ।
0: गुण गावत तरी उतर समैल, बिनस जाए हौं मैं बिख फैल।
1: हो अचिंत बसै सुख नाल, साध करा सर नाम समाल।
0: साध सियानप सगली मना, साध संग पावे सच तना।
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर कहे जयकार।
0: नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सा लाहे, एक सिमर एको मन आहे।

0: ज्ञान कर कर पा देवो हर नाम।
1: साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर।
0: सदा प्रभु के गुण गावो सा सा प्रभु तुए त्यावो।
1: चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत।
0: एको टेको आधार नानक मांगे प्रभ नाम प्रभ सार। नानक मांगे नाम प्रभ सार।
1: प्रभु की दृष्टि महा सुख होए हरस पावे बिरला कोए।
0: चाख्या से जंत्र पिताने पूर्ण पुरख नहीं डलाने।
1: सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे जाओ साध के संग।
0: परे सन आन सब त्याग अंतर प्रगा संत निवे लाग।
1: बड भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए।
0: सेव की मानसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत।

0: वर्षी जेकर मैया गुरप्रसाद साध नाम जप लिया
1: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभु संत दयाल भगत बचे सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
0: आदि पुरख कर्ण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत
0: गुनियार नीचे जान नानक तुमरी सारन पुरख भगवान
1: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई
1: वो भोजन का पर संगीत रसना जपते हर हर नीत
0: सुकानी सो बात न मानत हृदय बसे पूर्ण गुरु मान

0: का वहन वर्ण चहन ना जापत, तब हर सो कहो किसे व्यापत।
1: जब अपने आप पार ब्रह्म, तब हो भक्त होवत परम।
0: अपन केला बरतीजा, नान करने हार न दूजा।
1: जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त को किसको घनी।
0: जब एक हर अगव पार, तब नरक स्वर्ग को

0: अपार
1: शिशु के अपने आसन ता जन्म मरण को कह विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस हुए
1: जब भक्त अगोचर प्रवेक तब चित्र गुप्त कुछ पूछत लेख है
0: जब नान निरंजन गोचर घादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपने आप आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या
1: तै निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान को अवमान
0: जय श्रू केवल जगदीश तै लगत को कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे तै किसे भूख कवन तै प्रतावे
0: करन करावन करने हार नानक करते का नहे सुमार
1: अब अपनी शोभा अपने संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: वह सर्व कला

0: श्री तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता
1: जी जंतर सरता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: इसरा खेत कोई न मारे सो मुँह आज समनो बिसारे
1: रिश्ता जब

0: हुकम बूझ परम पद पाए।
1: इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार।
0: बंधन तोर पै निर्वैर, आंदन पूजा गुर के पैर।
1: ए लोग सुखिए पर

0: आठ पैर पर पेखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मानी छे नानक फल पावो
0: हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बस ते साच परिखिया।

0: सगल सिमिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे।
1: अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम।
0: सुन समाद अनह तह नाद कहना जाई अचर्ज विस्माद।
1: देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए।
0: सो अंतर सो बाहर अनंत कड़कड़ व्याप।

0: सर्वव्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी यह रहत सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पी होई नानक दर्शन देख सब होई
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार
0: अंक कला लखी न जाए जिस पावे तिस ले मिलाए
1: पवन

0: आस नित्याग होत्रांग संत जना की तूर मन मंग
1: आप छोड़ बेंती करो सा सागर तरो
0: हर तन के पर ले।

0: की सेव।
1: आल जंजाल बेकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते।
0: प्रसाद प्रभ धारी, नानक निवेगेव हमारी।
1: प्रभ की उसद करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। हर तन खाड़ चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान।

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का धूप स्वामी, मानस की गत एही। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी

देव गंधारी पंचमा चंचल सपन ही उर जायो इतनी ना बूझे कहूँ चलना बिगल पिओ संग मायो राव कोसम रंग संग रस रचया भिख्या एक पायो लो सुने मन सकर मन बिगता उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवा सर्व सखा गुर चरणा कलमल डारण मन सदारण ए आसर मोहि धरना रहाउ पूजा अर्चा सेवा बंधन अटेल मोहि करना बिकसै मन होवै परगासा बोरना गर्भै धरना बिकसै मन होवै परगासा बोरना गर्भै परना सबल मूर्त परसु संतन की इहे ध्यान धरना।

बैठत हर हर सुवत हर हर हरस भोजन खाता सतीत मजन कीनो साधु धूरी नाता सबल जम हर जन का उपजया जिनको सोत विधाता।

Cosas conversado, mitad ese jardío pa' hecho una llave de sangre, ande no gurme le rajao. Me leo mano sarvzu que na tiag na gato jai anaganag pad bo peke pre rom na dam sarlai मंदर भाग सुधारे अनादरुण चुन लाई को नान सदा रंग माने ग्रह प्रीत बीते सताई देवगंधारी पंजवा दर्शन नाम को मन अच्छे भ्रम आयो है सगल थान रे आए प्रयो संत पाछे राव केस हो सेवी केस राधी जोधिष्ठ सो गाछे सत्संग की सरणी परिये चरण रेन मन बाछे जोग न जाना गुण कोई महादुतर माए अच्छे आए प्रियो नानक गुरचरनी तो त्रि सकल दूर अच्छे देवगंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अति सुंदर मनमोहन प्यारे सब मद निरारे रहाओ।

अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत, रहाओ मेरु मेरु सब केत इस्यो बद चीत। अंधकाल संगी ने कहूँ ये त्रज है रीत, मन मूरख अजू न समझत सिख दे हार्यो नीत, नानक भोजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सहपं गुर प्रसाद, राग बिहागड़ा चोप दे महला पंजवां कर दूजा। दत्तन संगरिया भयंगन बसरिया, अनको परिया तो मैं हर हर करिया, तो सुख सहजरिया रहा।

रहाउ। चिनमय ना चिनमय राउ रंग करी राउ रंग कर डारी गीते परे परे सगना वे ताको बिहारे अपनी माया पसारी आपे देखना हारा नाना रूप तरे बुरंगी सदरे न्यारा अग्न पार लख निरंजन जे सब जग परमायु सगल परम तुज नानक प्राणी चरण ताए चितलायु राग व्याघड़ा छंद महला चौथा कर पेला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

नित नित नित जपै। बिनवंत नानक मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै। हर नार सुहागणे सवरंग माणे रांड न बेसी ब्रह्म पुरख चिराणे।

करना। नानक चात्रक हर बूंद मांगे जब जीवा हर चरणा। अमेओ सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संत संग मिले जब पूर्ण काम राम। सब काम पूरण दुख बदीर्ण हर निमक मनो ना विसरे। आनंद आनंद सदा सचा सर्व गुण जगदीसरे।

हर नाम जपत संत प्राणी ताकि मैं माँ कित हार बिसरनाई प्राण प्यारे चिंतवत दर्शन सतमना सब

हर नाम जपत सौत प्राणी ताकि मैं माकित गना हर बिसर नाई प्राण प्यारे चितवत दर्शन सत मना सब द्वेष आए गह कंठ लाए प्रभु जग मा पारे।

करे कंठन जमकंकर पकड़ लिया, पकड़े चलाया अपना कमाया महा मुनि रतिया। गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तमत तम गलातिया। काम क्रोध अहंकार मुठा, कोई ज्ञान प्रतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला।

रसना शब्द रसाई जैन हर हर मन वसाया महला तीजा सारसना जल जाऊ जन हर का नाम सारिया।

आप पकावे आपे भांडे दे भरोसे आपे ही बहावे आपे जलावे दे चिंगा आपे जुली परावे।

जय देखा ते जीवरी माया का संबंध नानक सचे नाम बिन वर्तन वर्त अंत महला पंजवा अंधे जानन दाती है जय सतगुरु मिले रजाई बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान दे रजाई।

पिया आपे निरंकार कारे आपे आपे ग्रे सुधिया श्लोक मल्ला दीजा गौर मख।

0: दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख तामना होई, तू करता करना मैं नाही जा हुकरी ना होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब शिष्य वाल्यो जिन कीती सो पार पिया, कहो नानक ते कियां बाता जो किस करना सो कर रहा।
1: सोदर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।